FM 100.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. मेरा नाम प्रोफेसर फवाद फारूक है. मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ. ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है. इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज, जिसमें बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश और नमक चिकनाई का परहेज, आपको दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर पेचीदगियों से बचा सकती है.
2: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
3: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.

Turn up the power on FM 100. The best music. 24 hours a day.

0: टेस्ट ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फवाद फारूक है, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज जिसमें बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश और नमक चिकनाई का परहेज आपको दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर पेचीदगियों से बचा सकती है।
2: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।

0: ने दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
7: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज़ बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
8: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
9: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो।
10: This program is brought to you by
11: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64 lakhs 49,000।

0: The Big Bear 100.
1: This program was brought to you by.
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए.
1: एंड
2: तो भाई साहब क्या समझे.
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का. एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे.
1: एंड
4: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से. यही है कैश की पक्की हिफाजत.
1: एंड
5: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सो. ये
6: इट्स 10 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
8: शोबिस सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने. शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद.

टेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा। कर पे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक, 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तआवुन से।

0: FM 100, the music power.
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाड बनाए फरोख,
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
9: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: शराइत जवाबित लागू हैं।

0: Feel the sound. Feel the breeze.
1: Feel the breeze.
0: FM 100.
1: FM 100.

0: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
1: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
2: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर मर्दानगी है?

0: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाड बनाए फरो।
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: Here we go again. Check, check, check it out.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Trading, trust me bro.
3: Nice scheme.
4: Committee.
5: Lad badhaye faro.
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू हैं।

0: अच्छा अच्छा सबसे प्यारा FM 100 हमारा।
1: भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई।

0: Nobody controls me. I am uncontrollable. The only thing that can control me
1: turn it up!
0: Is music. Is music. Is music. FM 100.
2: FM 100.
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition price sirf 64,49,000
2: FM
4: 100 Assalamu alaikum Pakistan
1: Azan e Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se
5: Bismillahir Rahmanir Rahim FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है और उस रोज अमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोले भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोले हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे, और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए अजबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। सूरह आराफ

0: You can listen longer.
1: Music, music flashes in my head. FM 100. FM 100. Station play.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
5: लाहौर, इस्लामाबाद, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
6: Assalamu alaikum Pakistan.
7: Assalamu alaikum Pakistan. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khush aamadeed kehte hain program The Hypertension Lens. Ye program ATCO aur Pakistan Cardiac Society ke taawun se aapki khidmat mein pesh kiya ja raha hai, jahan par baat hogi hypertension ke hawale se. Ji haan, is dauran kya ehtiyat darkar hoti hai, kya khayal rakhna hai, kya kuch kiya ja sakta hai ki hum isse mehfooz rahe, isse door rahe. Is program ke zariye aap tak ye malumat farham ki जाएगी। और आज ये मालूमात फराहम करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हयात मलिक, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मिड सिटी हॉस्पिटल, हमीद लतीफ हॉस्पिटल, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम।
7: एंड सर, वेलकम टू द प्रोग्राम।
8: थैंक यू।
7: यू वेलकम सर। हाइपरटेंशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है द हाइपरटेंशन लेंस। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, ये हाइपरटेंशन क्या है?
8: हाइपरटेंशन के बारे में समझने के लिए ये जरूरी है दो चीजों को समझना। एक जिसको हम हेल्थ स्पैन कहते हैं, यानी कि सेहतमंद जिंदगी, और दूसरा लाइफ स्पैन, यानी कि कितनी देर बंदा जिंदा रहता है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है, ये हेल्थ की कोई भी बात करेंगे तो उसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ जिंदगी की तवालत जो है वो अगर सेहतमंद ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो एक उससे नुकसान ज्यादा होता है। और इंसान की सेहत जो है जब खराब हो जाए तो उसके लिए जो है वो तमाम दुनिया एक किस्म की अंधेर हो जाती है। अब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का इसके साथ ताल्लुक इस तरह है कि चूंकि ये एक खामोश बीमारी है और ये जब शुरू होती है तो इसके बारे में आगाही नहीं होती, तो ये ना सिर्फ लाइफ स्पैन को अफेक्ट करता है बल्कि ये हेल्थ स्पैन को, चूंकि जब इसके बारे में पता चलता है तो उस वक्त तक बहुत सी पेचीदगियां या कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी वो इंसान को अफेक्ट कर रही होती हैं, और इसकी पेचीदगियां नहायत खतरनाक हैं। तो जब भी हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो हम ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये सबसे कॉमन जो है ये क्रॉनिक एलिमेंट है जिसके लिए मरीज डॉक्टर के साथ रजू करते हैं और जिसके लिए लॉन्ग टर्म इलाज या परहेज की जरूरत है।
7: बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया, जैसे हमने आपसे पूछा कि हाइपरटेंशन क्या है, तो आपने कहा कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो सर, अगर इसे साइलेंट किलर कहा जाता है यानी कि खामोश कातिल, तो अगर इसकी कोई अलामत नहीं है तो एक आम आदमी इसका पता कैसे लगा सकता है कि कहीं उसे हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं या उसे ये मर्ज तो नहीं?
8: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसी के लिए जो जिन ममालिक में हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है और लोगों में अवेयरनेस है, उनमें ये समझा जाता है कि जब भी कोई भी मरीज किसी डॉक्टर के पास स्क्रीनिंग के लिए या किसी भी गैर मुतल्लिका किसी शिकायत के लिए भी जाएगा तो वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। और ये एक यंग एज से हमें ये आदत बनानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में भी ब्लड प्रेशर कई दफा हाई हो सकता है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं, वो किसी और कंप्लेंट से भी जाएं, तो ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा इसके लिए कम्युनिटी स्क्रीनिंग भी, जैसे स्कूलों में बच्चों के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, इस तरह इसको भी स्क्रीनिंग का एक पार्ट बनाया जाए ताकि इसके जितनी जल्दी इसके बारे में पता चल सके उतना ही इंसान की कॉम्प्लिकेशंस कम होने का चांस है।
7: ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पता लगाने की जहां तक बात है, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं कि साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है, इसकी बजाय कोई अलामत नहीं पता चलती, तो क्या करना है हमें? नॉर्मली अपने बीपी को रोजाना की बुनियाद पर चेक करना है?
8: जी, देखें, बात यह है कि جیسے میں نے کہا کہ بلڈ پریشر چیک کروانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انتظار نہ کیا جائے کہ جب 50-60 سال کی عمر میں ہوں گے تو پھر ہی اس کے بارے میں اس کو چیک کرایا جائے گا, کیونکہ یہ گریجولی یہ بڑھتا ہے اور ماس وائے چند جو انڈر لائن کنڈیشنز ہیں جیسے گردوں کی تکلیف وغیرہ ہو تو یا کوئی انڈوکرائن پرابلم, تو اس کے علاوہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, تو اگر اس کی ارلی سٹیجز میں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, یعنی کہ ایون 130/80 جو ہے یہ بھی ہائی بلڈ پریشر یا ایلیویٹڈ بلڈ پریشر اس کو کہتے ہیں.
7: جی جی.
8: تو اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ نارمل بلڈ پریشر کیا ہے تو نارمل بلڈ پریشر 120/80 یا اس سے کم ہے.
7: جی.
8: اس سے اوپر جو 130/80 ہے وہ بھی ایلیویٹڈ بلڈ پریشر میں جاتا ہے اور جب 140 تک ٹچ کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ از ہائی بلڈ پریشر. تو یہ جو پرانے زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ 100+ ایج تو وہ اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے اور اب یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عمر میں نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 تک رہنا ضروری ہے.
7: بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اس چیز پر غور و فکر کرے اور بالکل اپنے بی پی کو چیک کرے تاکہ اسے پتا چلے کہ کہیں اسے بلڈ پریشر تو نہیں ہے, وہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ تو نہیں ہے. تو اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی بی پی کو ضرور چیک کریں. اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس, یہ پروگرام ایٹ کو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ندیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 50-60 سال کی عمر کے بعد اپنی بی پی کو چیک کر رہے ہیں, اب ینگ ایج سے شروع کرنا ہے سر, تو کیا ایک رائٹ ایج ہے جو آپ کہیں گے کہ اس عمر کے بعد سے پابندی سے آپ نے چیک کرنا ہے, تو وہ کوئی ایج ہے جو آپ کہنا چاہیں گے؟
8: دیکھیں جی, ایج جیسے میں نے بتایا کہ کئی دفعہ ایون سکول چلڈرن میں بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی وہ کمپلیکیشنز ان کو شروع ہو جاتی ہیں ایٹ اے ویری ارلی ایج, اور کئی دفعہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے تھا جیسے گردوں کی خرابی یا کوئی اور اینڈوکرائنل ایشوز. تو جب بھی اسکریننگ پروگرام جیسے میں نے پہلے کہا کہ کمیونٹی اسکریننگ جس میں اسکول اسکریننگ یا ایون ادر وائز جیسے ہم پولیو کے لیے کرتے ہیں یا ایسی ماس اسکریننگ پروگرام چلاتے ہیں, تو یہ ایک نیشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ کوشش کی جائے کہ پاپولیشن کا جو ہے وہ بلڈ پریشر وہ وقتاً فوقتاً اس کو چیک کیا جائے, اور اس کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہے. جتنی جلدی آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنا ہی پرہیز اور احتیاط سے اس سے آپ بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو چیک کرنے کے لیے کسی بھی ایج کا انتظار نہ کریں, جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ملے یا کسی ایسی جگہ جہاں بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہو وہاں کیجولی کوشش کریں چیک کروانے کی, خود بھی چیک کر سکتے ہیں جس کے لیے آج کل اچھے الیکٹرانک آلات بھی ملتے ہیں جو کہ جو کیلیبریٹڈ یا ایف ٹی اپروڈ جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی یوزفل ہیں. تو اس کے لیے بس پیغام یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اسکریننگ کرواتے رہیں, اور یہ چونکہ ایک نان انویسو اسکریننگ ہے اس میں کوئی انجیکشن سوئی بلڈ کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو جب بھی آپ کیجولی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی ہیلتھ ورکر کے پاس بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں.
7: بالکل ٹھیک ہے, تو اب یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دس از کمپلسری کہ آپ لوگ اپنی بی پی کو ضرور چیک کریں, یہ بہت ضروری ہے اور کوئی عمر درکار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے میں بھی اب اس کو پایا جا رہا ہے. سو اب آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک ایج نہیں دی جا رہی ہے, لیکن آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اور حقیقت ہے کہ بات کے رونے سے بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد اس کا پتہ لگا لیں کہ کہیں آپ کو ہائپر ٹینشن تو نہیں. اب بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگر فیملی ہسٹری میں بلڈ پریشر ہے اور اماں ابا کو ہے, آبویسلی وہی آپ کی فیملی ہے, تو کیا بہت ارلی جو ہے وہ بچوں میں بلڈ پریشر آ جاتا ہے, یا یہ مت ہے, یا بالکل فیملی ہسٹری کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے؟
8: جی دیکھیں, اس میں 90% جو لوگ ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, یعنی کہ مطلب وہ کچھ جینیٹک ہوتا ہے اور کچھ انوائرمنٹل انفلوئنسز جیسے ڈائٹ میں نمک کا استعمال اور ورزش نہ کرنا اور ویٹ بڑھنا, بہت سے ایسے عوامل ہیں, تمباکو نوش بھی شامل ہے, تو ان کی وجہ سے وہ پھر ایک قسم کا مینیفیسٹ ہو جاتا ہے. لیکن صرف فیملی ہسٹری کی بیسس پہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اتنا کامن نہیں ہوتا, آل دو کچھ جینیٹک انفلوئنس ضرور ہو سکتے ہیں, اور جن فیملیز میں ہائی بلڈ پریشر ارلی ایج یا ینگ ایج میں شروع ہوتا ہے उनको चाहिए कि वो पर्टिकुलरली इसकी स्क्रीनिंग जल्दी करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें वो जो जेनेटिक ट्रेट है वो अर्ली मैनिफेस्ट हो रहा हो, लेकिन बाय फार एंड लार्ज क्योंकि ये एक पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है
7: विच
8: जो कि किसी को भी स्पेयर नहीं करती, तो इसके लिए पैगाम वही है कि जितना भी फ्रीक्वेंटली हो सकता है साल में एक दफा कम से कम जरूर अपना ब्लड प्रेशर अपनी फैमिली का जरूर चेक करवाएं।
7: बिल्कुल ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, बिकॉज अभी हम एज पर बात करें, ब्लड प्रेशर पर बात करें, आपने कहा कि जरूर कराएं। अच्छा सर, यंग एज में अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है सो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये रिवर्स हो जाए?
8: देखिए बात यह है कि यंग एज यानी अब ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग जैसे मैंने कहा है कि हम अगर बच्चों को निकाल दें तो एडल्ट एज यूं शुरू होती है 18 साल की उम्र से कम से कम स्क्रीनिंग जरूर की जाए और हर साल बेहतर है कि आप उसको चेक करवाएं या जब भी आप विजिट करें। लेकिन बच्चों में भी 3-4 साल की उम्र के बाद से इसको थोड़ी बहुत रूटीन बनानी चाहिए और ओकेजनली जरूर चेक कराना चाहिए। अब बात यह है कि जो कुछ अवामिल ऐसे हो सकते हैं जिनमें यंग एज में ब्लड प्रेशर शुरू होता है, तो जितनी जल्दी उन कॉजेज का पता चलेगा उनका इलाज हो सकता है, क्योंकि जो 10% पॉपुलेशन है उसमें हाई ब्लड प्रेशर किसी और वजह से भी हो सकता है और उनमें सबसे कॉमन गुर्दों की खराबी है यानी किडनी डिजीजेज। तो अगर इनका पता चल जाए तो उसका इलाज करने से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है बल्कि गुर्दों को भी इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अर्ली एज पे इसका डायग्नोसिस किया जाए ताकि इसको दवाइयों की स्टेज से पहले पहले इसको परहेज और एहतियात के साथ इसको कंट्रोल रखा जाए, जिससे ना सिर्फ लाइफ स्पैन बेहतर होगा बल्कि हेल्थ स्पैन यानी हेल्दी जिंदगी जो है वो भी ज्यादा देर चलेगी।
7: बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये वो चीजें हैं जिस पर हमें गौर व फिक्र जरूर करना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने बताया गुर्दों के बारे में तो हमने बात की, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि मुसलसल जब ब्लड प्रेशर एक आदमी का हाई रहता है और इसका कोई एहतियात नहीं होती है सच, लेकिन मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
8: जी, हाई ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत ही इस लिहाज से इसको खतरनाक कहना चाहिए कि एक चीज का आपको पता ही नहीं है लेकिन वो आपके घर में एक दुश्मन छुपा हुआ है। तो जब ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं तो सबसे जो अहम कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो अगर आंखों से शुरू करें तो बिनाई का इफेक्ट होना या चले जाना, नंबर टू गुर्दों की खराबी या किडनी फेल हो जाना, नंबर थ्री हार्ट अटैक यानी शरियानों की तंगी की वजह से दिल को खून की सप्लाई मुतासर होना और दिल का बढ़ जाना यानी दिल के पट्टे जो है वो शुरू की स्टेजेस में मोटे होते हैं और उसके बाद दिल फैलना शुरू हो जाता है और वो हार्ट फेलियर की स्टेज जो कि डेथ कॉज कर सकती है। तो इसके अलावा जो पांव और टांगों की शरियाने उनका तंग हो जाना जिसकी वजह से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यानी चलने से टांगों में दर्द होना, तो ये इसकी बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि ना सिर्फ क्रॉनिक डिसेबिलिटी प्रमोट करती हैं बल्कि अर्ली डेथ भी कॉज कर सकती हैं। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस जो है वो अर्ली स्टेजेस पर बहुत जरूरी है।
7: बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि डॉक्टर नदीम आपको यही बता रहे हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बीपी को रोजाना की बुनियाद पर चेक जरूर करें और कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है, आपने जरूर इसे चेक करना है क्योंकि आजकल ये मसला बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस, ये प्रोग्राम एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तआवुन से आप लोगों की खदमत में पेश किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों तक ब्लड प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए मालूमात फराहम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे क्योंकि हम हाई ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को लेकर, अगर हम बात कर रहे हैं दो आदमियों की कि जिसमें से एक है जो दवा लेकर अपने बीपी को कम कर रहा है और एक दूसरा आदमी है जो कि अपने बीपी को दवा की बजाय वॉक कर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाकर कम कर रहा है, तो इसमें से बेहतर इंसान कौन है?
8: ये बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है कि क्या परहेज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए या दवाई से। अब बात यह है कि अगर तो ब्लड प्रेशर जो है वो अर्ली स्टेजेस पे है जैसे 130 ओवर 80 या इवन 140 ओवर 90 से नीचे है, तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जिनमें सबसे अहम चीज जो है नमक कम से कम खाना और नंबर टू रेगुलर वॉक या फिजिकल एक्टिविटी جس میں وزن کنٹرول کرنا، اس کے بعد سبزیوں اور پھلوں کا کثرت سے استعمال اور تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز، اور کم از کم 7 سے 8 گھنٹے ان انٹرپٹیڈ سلیپ یعنی کہ پرسکون نیند، اور لاسٹلی اپنی زندگی میں ٹینشن یا سٹریس کم سے کم کرنا. ان چیزوں پہ عمل کرنا بلڈ پریشر کے علاج کا اولین مرحلہ ہے، یعنی فرسٹ سٹیج ہے. لیکن جب بلڈ پریشر دوائی کی سٹیج پہ آ جائے جو کہ ان سب چیزوں پہ عمل درآمد کے باوجود بھی بلڈ پریشر کم نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوائی کھانی ہے، لیکن یہ جو آپ نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے.
9: اچھا.
8: کیونکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو دوائیاں بڑھتی جائیں گی اور کمپلیکیشنز بھی پیدا ہوں گی. تو دوائی کم سے کم کھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب لائف سٹائل فیکٹرز کو آپ مد نظر رکھیں اور ان پہ ریگولرلی عمل کریں، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ سپین کے لیے ضروری ہے کہ جا کے آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور کمپلیکیشن سے بچے رہیں. تو صرف دوائی کھانے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو حل کرنا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پلس میڈیکیشن اگر ضرورت ہو تو. یہ دونوں چیزیں ملا کے چلنی چاہیے.
9: بالکل. یعنی کہ جو دو آدمی ہیں ان دونوں کو یہ چیزیں ایک میں کر کے چلنی ہیں. دس از امپورٹنٹ.
8: جی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارلی سٹیجز آف ہائی بلڈ پریشر پہ ڈائگنوز ہو سکتے ہیں، تو ان کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے وہ اپنا بلڈ پریشر ایزیلی 120/80 یا اس سے بھی کم پہ لے آتے ہیں اور وہ کئی سال تک دوائی سے بچے رہتے ہیں. لیکن جب دوائی کی سٹیج آئے تو اس کو بھی ریگولرلی استعمال کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا لائف لانگ فالو اپ ہے. اور یہ اس میں فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ود ایج، بلڈ پریشر اوپر والا اسپیشلی بڑھتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ان ایکٹیویٹی اور یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی دوسری بیماریاں بھی ساتھ کئی دفعہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی امپورٹینس کو بیسیکلی ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ارلی شروع کریں اور اس کو جاری رکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹو چینج لے کے آئیں جس سے آپ کو ایک صحت مند آپ جو سال ہیں وہ گزر سکیں.
9: بالکل ٹھیک ہے جی. سر دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کو بھی فالو کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی دوا کو بھی لینا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ لے کر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بہت بہتر رہے گا اور کم رہے گا، نہ کہ ہائی رہے گا. کیونکہ اگر بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہتا ہے تو وہ بہت سارے مسئلے اور بیماریوں کو ساتھ میں دعوت دیتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ دعوت نہ ہو تو اس لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بھرپور خیال. اچھا سر، بات ہم کر رہے ہیں ہائپر ٹینشن کو لے کر، تو سر یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ غصے کا بہت آنا بھی بی پی ہوتا ہے، یہ بھی بی پی کی علامات ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے؟
8: دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے کہ غصہ جس کو آتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا بلڈ پریشر جاتا ہے.
9: ہاں یس، بی پی ہو جائے گا. یس
8: جی، جب بھی انسانی جسم جو ہے جب وہ انڈر سٹریس ہوگا ڈیو ٹو اینی ریزن، مینٹل سٹریس جس میں امپورٹنٹ ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مینٹل ریلیکسیشن بہت ضروری ہے، تو جب بھی انسان سٹریس میں ہوگا اس کا ہارٹ ریٹ بڑھے گا، اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا، اور جو جسم کے اندر ایک سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ٹائمز آف سٹریس. تو وہ پھر جب سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ ساری جو فیکٹرز ہیں یہ سڈنلی بلڈ پریشر کو بھی بڑھائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو بلڈ پریشر کا جو علاج ہے جو نان فارموکولوجک مینز ہیں، اس میں آج کل ریلیکسیشن تھراپی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو سمجھا جاتا ہے، جس میں کہ باہر کہیں کھلے علاقے میں سیر کرنا یا پارک میں سیر کرنا، نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اس کے علاوہ یوگا، ریلیکسیشن ایکسرسائزز، اور اس میں بہت سی ایسے آج کل ایسے پوزیشنز ایسی ڈٹرمن ہوئی ہیں جن میں آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نیچرلی 3 to 5 degrees کم ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ نے جتنا ریلیکس رہیں گے. اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ آج کل یہ سوشل میڈیا اور سیل فون کی وجہ سے وہ نیند کی کمی ہے اور خرابی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ سوتے وقت بھی اپنا فون بار بار چیک کرتے ہیں، اور جب بھی آپ کی بلو لائٹ جب آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کا جو نیند والا سسٹم ہے وہ فوراً ڈسٹرب ہو جاتا ہے، और उसके बाद आप आधा पौना घंटा आपका नर्वस सिस्टम वो नींद को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 7 से 8 घंटे हर एडल्ट जो है उसको सोना चाहिए और बिल्कुल पुरसकून नींद हो, और ताकि ये कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो और उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, वरना ये एक बहुत आम वजह समझी जाती है जो आजकल नौजवान नस्ल में हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी कई बीमारियां शुरू हुई हैं।
9: बिल्कुल ठीक है, सो ये भी हमने एक बात जानी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपर टेंशन लेंस, ये प्रोग्राम एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से पेश किया जा रहा है और आप लोगों तक मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नदीम मौजूद हैं और आपको तफसील से बता रहे हैं सारी बातें जो कि बड़ी जरूरी हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि हाइपर टेंशन पर बात चल रही है, अक्सर लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, और अक्सर चेक करने पर वो लो आ रहा है, कम आ रहा है, तो लोग ये सोचकर भी अपनी अद्वियात को खुद ही बगैर डॉक्टर से रिजू करे खाना छोड़ देते हैं, ये देखकर कि भाई 3-4 दफा बीपी लिया है और वो तो लो आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो ये तरीका कार जो लोग अपनाते हैं क्या ये सही है, क्या ये बात है कि ब्लड प्रेशर खत्म हो रहा है, व्हाट इज द रीजन?
8: जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है और वो उनके डॉक्टर या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ये उनको बता देते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए उन जरूरी है ये बात समझना कि अब ब्लड प्रेशर के साथ ही गुजारा करना है और इसको ये समझना कि ये किसी स्टेज पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा बहुत मुश्किल है।
9: अच्छा।
8: और परहेज, एहतियात, वजन कम करने से, नमक कम करने से ये नॉर्मल की तरफ जा सकता है, लेकिन ये समझना कि नहीं ये बिल्कुल अब खत्म हो गया और अब अद्वियात हम छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और जो भी मरीज दवाई छोड़ते हैं उनका वो ब्लड प्रेशर कुछ अरसे बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में मुबतला हो जाते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे आपका कम हुआ है तो आप डॉक्टर से मशवरा करके दवाई को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें ताकि जब जरूरत पड़े तो दवाई को टाइमली बढ़ाया जा सके, और इसको इसमें बहुत ज्यादा खुद रद्दोबदल ना करें, क्योंकि अगर एक दफा आप एक दवाई के ऊपर स्टेबल हो गए हैं तो फिर ये बहुत कम चांस है अनलेस के कोई जिस्म में नमक या पानी की कमी हो जाए या बुखार या कोई और वजह हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे कम हो जाए। तो इसलिए दवाई में रेगुलरिटी और कंप्लायंस का एक बेसिक इसका कॉर्नर स्टोन है इसकी ट्रीटमेंट का।
9: बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये आपने अच्छी बात हमें बताई। उसी के साथ सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई ब्लड प्रेशर लो आया तो दवा खाना छोड़ दी, उसी के साथ साथ लोग जो हैं वो दीगर नुस्खे और टोटकों पर भी बिलीव करते हैं, जैसे कि लहसुन निहार मुंह खा लो या फिर कावा दारचीनी का बनाकर पी लो तो इससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है या हाई नहीं होता, इस तरह के नुस्खों पर भी लोगों का बड़ा बिलीव है, और लहसुन को निहार मुंह खाने पर लोग सोचते हैं कि शायद इससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, तो सर ये सब क्या है, ये लोगों की मिथ है क्या, वाकई में इसका कोई कंसर्न है?
8: देखिए जी, ये जो मुख्तलिफ गजाई जो इसमें नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सबसे अहम चीज ये समझना है कि जिस चीज का हाई ब्लड प्रेशर के साथ 100% ताल्लुक साबित हो चुका है और उसमें कोई शक शुबा नहीं है वो नमक है।
9: अच्छा।
8: और अगर आप एक चीज के बारे में पूछें कि जी ब्लड प्रेशर का ताल्लुक किस खाने के साथ है तो वह नमक है। अब नंबर टू ये कि लहसुन या प्याज या लीमू या ऐसी चीजें, क्या इनका इसके कंट्रोल में कोई रोल है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, और जाहिर है कि हम 21वीं सदी में बैठे हैं
9: जहाँ
8: की हर चीज जो है उसका एक आपके पास 100% आपको नॉलेज हो सकता है, तो उस वक्त ये चीजें जो है वो अपनी जगह पे ठीक है। आप एक हेल्दी डाइट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके जिस्म को हो सकता है आपके लिए कुछ फायदेमंद हो, लेकिन प्योरली इस पे रिलाय करना कि सिर्फ लहसुन खा लेंगे और या प्याज खा लेंगे और ब्लड प्रेशर उसे कंट्रोल रहेगा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा जनरल पब्लिक को इसके बारे में आगाह होना जरूरी है।
9: बहुत जरूरी है।
8: ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो मेडिकल एडवाइस के बगैर खुद ना करें। अगर आप अपनी डाइट में कोई मुस्बत तब्दीली लाते हैं, जैसे हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को रिकमेंड करते हैं कि सब्जियां और फल ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। इसके अलावा पानी पिएं, और पानी के अलावा कोई भी मशरूब, कोई भी ड्रिंक इनसे परहेज करें, और लेकिन फिर एंड जो रिजल्ट है वो यही है कि नमक का इस्तेमाल, और नमक सिर्फ ये नहीं है कि जी ऊपर नहीं छिड़कना, नमक जो चीजें भी हम खा रहे हैं जो बाजार से डब्बे में बंद मिल रही हैं हर चीज में नमक एज ए प्रेजर्वेटिव शामिल किया गया है, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्रेजर्वेटिव है।
9: हाँ,
8: तो हर चीज में जो कि ताजी नहीं है उसमें नमक ऑलरेडी मौजूद है, और कई सब्जियों फलों में वैसे भी नमक होता है। तो जितना भी खाना जो है वो टूवर्ड्स सॉल्ट फ्री हम रखेंगे उतना ही हम हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे।
9: बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने जरूर फॉलो करना है, और इसलिए हम सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों पर बिलीव करते हैं और वो इसी की वजह से अपनी अद्वियात को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपको मिसालें दे रहे हैं, बता रहे हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। अच्छा सर, गर्मी का भी मौसम चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इस दौरान आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इस दौरान ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत आती है, लो हो जाता है, क्या सूरत हाल रहती है इस मौसम में?
8: जी जनरली जो ब्लड प्रेशर है ये जब गर्मियों का मौसम आता है तो इसमें क्योंकि पसीना आता है, पसीने में सॉल्ट होता है
9: जी,
8: तो जनरली ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि सर्दियों में ये ज्यादा रहता है। अमूमन जो ठंडे मुल्क है उनमें ये देखा गया है। तो शदीद गर्मी में जाहिर है जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस हैं। तो एक तो ये कि बहुत गर्मी में ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस तरह नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो हो सकता है उनको चक्कर आ जाएं या वो गिर जाएं या बेहोश हो जाएं, या जो अदवियात हैं उनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा एग्जेजरेट हो जाए। तो कई दफा अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल टूवर्ड्स लोअर साइड रहे तो हम उनकी दवाइयों को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, स्पेशली जो डायूरेटिक्स या पेशाब आवर दवाइयां, क्योंकि वो भी जिस्म में से पानी और नमक निकालती हैं। तो अगर पसीना ज्यादा आता है तो फिर इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, और बहुत गर्मी में फिरने की बजाय अगर जैसे आपने सैर के लिए निकलना है तो शदीद गर्मी में ना निकलें, बल्कि सुबह सुबह या शाम को अंधेरे में थोड़ी वॉक करें। तो ये एहतियात बहुत जरूरी है जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं उनके लिए, ताकि वो खुदा ना हादसा ब्लड प्रेशर लो होने से किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो जाए।
9: बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, साथ ही साथ बकरीद भी आने वाली है, तो क्या कहेंगे आप इस वक्त ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को?
8: देखें जी, बात यह है कि बकरीद के हवाले से ये जरूरी है समझना कि जैसे कि हमारे मजहब में भी है कि कुर्बानी का मतलब ये है कि आप जो गोश्त और जो ऐसी आप कुर्बानी दे रहे हैं वो आप गरीबों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और ये जरूरी नहीं है कि इंसान खुद ही पूरा बकरा खत्म करना चाहे। तो इसलिए ये बेसिकली कुर्बानी के जज्बे को अगर सामने रखें तो थोड़ा बहुत गोश्त आप जरूर चख सकते हैं, एक दो बोटियां, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी भी चीज की जो है वो ज्यादती वो इंसानी जिस्म के लिए वो नुकसानदेह है, और इसलिए हमारा मजहब बार बार म्याना रवि का पे यकीन रखता है, और वो यही हम प्रमोट करते हैं कि अपने बॉडी को स्ट्रेस ना दें और मैदा जो है उसको थोड़ा खाली रखें और उसको ओवरलोड ना करें, चाहे वो गोश्त है या कोई भी चीज है, थोड़ा खाना खाएं, थोड़ी भूख रखें, इससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपका जिस्म भी उसको हजम करने की पोजिशन में होगा।
9: बिल्कुल ठीक है सर, ये तो आपने सही बात कही है। और सर, क्योंकि अब वक्त ऑलमोस्ट हमारे पास खत्म हो चुका है, तो आप क्या इस वक्त हमारे तमाम सुनने वालों को कोई मैसेज देंगे?
8: जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो उसके मुनासिबत से मैं यही कहूंगा कि चूंकि इस साल का थीम है कि सब मिलजुल के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर मिलजुल के अगर हम बात करें तो इसमें नंबर वन एक मरीज है, नंबर टू डॉक्टर है, और नंबर थ्री उसके साथ फैमिली और कम्युनिटी है। ये तीनों जो पार्टीज हैं ये इनका काम है कि वो मिलजुल के मरीज को इस मुश्किल वक्त में उसके साथ रहें, उसको सपोर्ट करें ताकि वो अद्वियात बाकायदगी से ले, परहेज करे, उसकी जिंदगी को हेल्दी रखें, और मरीज खुद भी इस चीज को समझे। तो अगर हम मिलजुल के सब लोग काम करें तो फिर ये इस बीमारी से ना सिर्फ हम बच सकते हैं बल्कि इसके मुज़िर असरात से भी हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम, हमारी जो यंगर जनरेशन है वो एक सेहतमंद जनरेशन में बदल सकती है।
9: बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका और आपके वक्त का जो आपने इस वक्त दिया है हमारे तमाम सुनने वालों तक मालूमात फराहम की, सो थैंक यू।
8: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
9: आप सब सुन रहे थे प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस। ये प्रोग्राम एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से पेश किया जा रहा था। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज डॉक्टर।
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
10: You're in tune to FM 100.
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
15: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
16: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
15: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
17: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
18: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
17: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
19: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
20: سیواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، برائے رابطہ 0333-555-0001।
3: This program is brought to you by
4: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
10: One station.
0: 100 FM।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
21: श्वाबिस सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मस्नूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। श्वाबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: One station.
4: 100 FM.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64 lakhs 49,000.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन प्राइस सिर्फ 64,49,000
2: Someone born to lead.
3: FM 100.

घूमते हो, किस घड़ी को ढूंढते हो, एक पल को ठहर जाना, जो कभी फुर्सत मिले तो, किन से शिकवा है गमों का, किन से है खुशियां जुड़ी, जैसे भी गुजरे थे दिन वो, जिंदगी में अब नहीं।

अपने ही अक्से में छुपसा गया हूँ, चक्सा में सबसा बनता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं धसता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं मरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ।

करेंगे कैसे? एक अदद मेरी मदद मुझे दे दो, मेरी कदर सारी हदें करूं खत्म, मैं तो पाऊं अपने हदफ में तो पूरी करूं कसम, मुझे अपनी बात का असर, मुझे मालूम मेरे अजम, मैंने खाई उससे कसम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम।

0: Broadcasting. Broadcasting to the coolest people of Pakistan and the World Wide Web.
1: Hi, this is FM100.
0: This is FM100.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

0: Lo que Joliet estaba esperando. Lo que Joliet estaba esperando. Una radio vía internet. Con todo lo que querías escuchar.
1: Check this out.
0: Variedad de música, entrevistas, consejos de salud y belleza. Y mucho más. Espérala muy pronto. Cyber y en radio.
2: Stay tuned to FM 100.
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
10: प्लाट बनाए फरो।
11: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
12: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: शराइत जवाबित लागू हैं।

0: The voice of the nation. FM 100. 24 hours a day.
1: रास।
2: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराहे रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराहे रास्त।

0: 101FM, your location for maximum music.
1: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्योपैथी पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।

0: 600 FM, The Music Machine.
1: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: Ras.
4: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है। ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है, वो जो नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले हैं। सूरह नमल।
3: It's 5 PM. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular. दिखाए काम AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
5: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फवाद फारूक है, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज जिसमें बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश और नमक चिकनाई का परहेज आपको दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर पेचीदगियों से बचा सकती है।
8: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: आन।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: रास्त।
6: रास्त।
7: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात, कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
8: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है, ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
10: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
11: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
12: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
9: एंड
13: तो भाई साहब क्या समझे।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
14: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
9: एंड
15: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड
16: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रास्ते से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
9: एंड
0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फवाद फारूक है, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज जिसमें बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश और नमक चिकनाई का परहेज आपको दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर पेचीदगियों से बचा सकती है।
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना। जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
7: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शरायत ज़वाबित लागू हैं।
9: हेलो, गेस व्हाट, हंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।

0: your location for maximum music.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath, full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फवाद फारूक है। मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। इसकी बर्वत तशखीस और इलाज, जिसमें बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश और नमक चिकनाई का परहेज, आपको दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर पेचीदगियों से बचा सकती है।
8: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।

0: करें 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
4: लाड बराए फरोख,
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शराइत ज़वाबित लागू है।
10: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
11: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
12: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील, और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
4: एंड
5: तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
8: And
9: cash up jeb mein nahi, barah raast bank account mein payment leta hu sirf raast se. Yahi hai cash ki pakki hifazat.
7: And samajh mein paseene ke saath haath uthane ka confidence bhi beh jata hai. Isiliye Dettol Cool Soap. Ye
0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
10: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
11: FM
12: 100. Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
13: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशादे बारी ताला है, सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBF